0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त चित्र?
1: के विचार? को फुलीवाली? मतलब बहिनी?
0: बहिनी त साली, तिमी त मेरो फुलीवाली।

0: お前ね、
1: おじおじおじ、
0: おでかおきやね、ちゃちゃちゃちゃちゃ。
2: प्यार से दे रहे हैं, रख लो।
0: देख देख देख, अरे और ये बाप रे बाप, इस टाइम तो ब्लास्टिंग मारे लू हो,
1: तू चारी भी क्या लिखवा ले लू का,
0: अरे रे, ए ए,
2: आ जिगर पलट।

0: お前ね、
1: ポジポジポジ。
0: おでかわってやれ。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
2: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू जारी भी क्या लिखवा ले तू का अरे अरे ए ए
2: आ जिगर पलट